हर त्यावह हर त्यावह तुध जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी

तोदय पे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तोदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सच्यार मेडा साईं,

तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसाए मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन कहो आज संगरिए। पूर्ण है हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो मर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

जो सदा हमारे पछा श्रीस तुझो करियो रक्षा। राख ले मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे।

जवन काल जोगी शिव कियो, बेदराज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब

नम सकार तसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जाबे उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या कर्ख कर तो हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन सृष्ट सब तारा, आप अपनी बूढ़ उचार।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पहया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया

दुख सब बिसारण अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारण सबना गल्ला सुमरत स्वामी

जिन को लगी प्यास अमृत से खाए, कल महे हो पुन गुण गोविंद गाए, सब सैनु कृपाल संभाले साए साए।

भवतु जन्म विचरिति माधो ये जन्म तुम्हारी लिखी कह रविदास लग जीवो।

दिवस अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बधाई तोय रहाओ। विश्वे चस्या घड़िया पहरा थिती वारी माओ हुआ सूरज कुरुप अनेक। नानक करते के तेवेश राव तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। धूप मल अन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती

अनित है सुनित है, अजात है अजाद है, चरपड़ छंद प्रसाद, सर्वं हंता सर्वं अंधा, सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता, सर्वं हरता सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं, सर्वं कर्म सर्वं धर्म।

प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विबुधे परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्भाव विबुधे अनंगी अनामे दर्भंगी दर्कामे दर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रा न मित्रा न सत्रा न मित्रा

अमृत शाड भिखै भिखु खाई, माया मोह परम पै भुलि, सुत दारस्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंतो सुनियो गुर संगतो, तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई।

तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पहा मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे

जय लिख प्रभु जय पार, तृष्णा अहनस अगली होमै रोग विकार। ओ वे प्रवाहो अतुल वा गुरमत कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सो प्रीत मिलाप, बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जीरै छुटिया गुरमुख चीने आप, तन मन गुरपै बेचया मंदिया सिर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला। मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रित पाले लेखै शास्त्र ग्रास। अंतर गुरमुख तू वसै जो पावै त्यो निरजास। जियरै राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाउ। अंतर की गत जानियै गुर मिलियै संक उतार, मोया जित कर जाइयै तित जीव दया मर मार। अहनस शब्द सुहावणै पाइयै गुर विचार, अनहद बाणी पाइयै तै होमै होए बिनास। सतगुर सेवै अपना हो सद कुरबाणै तास। खड़ दर गै पहनाइयै मुख नाम मुख हर नाम निवास। जय देखा तै रब रह शिव शक्ति का मेल, त्रिगुण बंदी तेहरी जो आया जग सो खेल। विजोगी दुख विछड़ै मन मुख लय न मेल, विजोगी दुख विछड़ै मन मुख लहे ना मेल। मन बैरागी कर बसै सच पैराता होए, ज्ञान महारस भोग वै बहुत दुख ना होए। नानक एहो मन मार मिल पी फिर दुख ना होए। श्री राग महला पहला। एहो मनो मूरख लोभिया लोभै लगा लोभान, शब्द ना पीजै साकता दुरमत आवन जान। साधु सतगुर चे मिलै ता पाइय गुणी निदान।

मुख हर जल पाई, अंतर कमल प्रकाशिया अमृत भरिया अघाई। नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमतले हर बोल, मन सच कसवटी लाइए तुलिए पूरै तोल। कीमत किने न पाइय रिद मानक मोल अमोल, पाई रे हर हीरा गुरमाहे। सतसंगत सतगुर पाइय अहन सब सलाहे। रहाओ सच वखर धन रास लै, पाइय गुर प्रसाद जो अगन मरै जल पाइय। त्यों तृष्णा दा संदास जम जंदार ना लगई, ओ पव जल तरै तरास। गुरमुख कूड़ ना पावई सच रतै सच पाए, साकत सच ना पावई कूड़ै कूड़ी पाए। सच रतै गुर मिलियै सचै सच समाए। मन में माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर, सच वखर धन नाम है घट घट गहर गंभीर। नानक गुरमुख पाइय दया करै हर हीर। श्री राग महला पहला। पर मैं पाहे न विजवै जे पवे दिसंतर देस, अंतर मैल ना उतरै त्रिग जीवन त्रिग वेस। होर कितै भगत ना होवई बिन सतगुर कै उपदेश।

सत्संगत हर पाइए गुरमुख हर लिवलाए। आप गया सुख पाया मिल सललै सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो सो औगण आवै जाए। जिस सतगुर पुरख न पेट्यो सो पौजल पचे पचाए। इहो माणक जियो निर्मूल है इहो कोडी बदले जाए। जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजाण। गुरमिल पौजल लंघियै दरगै पत परवाण। नानक ते मुख उजलै तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल। तैसी वस्त वे साही है जैसी निभै नाल। अगै साहो सुजान है लैसी वस्त समाल। पाई रे राम कहो चित लाए। हर जस वखर लै चलो सौ देखै पति आए रहाओ। जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए। खोटे वणज वणजी है मन तन खोटा होए। पाही फातै मिर्ग ज्यों दुखणो नित रोए। खोटै पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्शना होए। खोटै जात ना पत है खोट नसी जिस कोए। खोटै खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सलाह। राम नाम रंग रत्या पार ना भरम तिना। हर जप लाहा गला निरपौ हर मन माहा। श्री राग महला पहला कर दूजा। धन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़ै दिन चार। पबण केरै पत ज्यों।

होए ख्वार। तातर बाजी पलचर है ना उरवार ना पार। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा मनमुख मोह व्यापिया बैराग उदासी ना होए। शब्द ना चीने सदा दुख हर दर कै पत खोए। होमें गुरमुख खोइए नाम रतै सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित्यासा। सतगुर सेव मोह पर जलै कर ही माहे उदासा। रहाओ गुरमुख कर्म कमावे बिकसै हर बैराग आनंद। अहनस भगत करै दिन राती होमै मार नचिंद। वडै भाग सतसंगत पाई हर पाया सहज आनंद। सो साधु बैरागी सोई हृदय नाम बसाए। अंतर लाग ना तामस मूलै विचो आप गवाए। नाम निदान सतगुरु दखालिया हर रस पिया अघाए। जिनकिने पाया साध संगति पूरे भाग बैराग। मन मुख फिरे न जाने सतगुरु होमे अंदर लाग। नानक शब्द रतै हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाईए अंतर सब बात होए। किन किन नाम संभालिए गुरमुख पावे कोए। नाम निदान अखुट है वडभाग प्राप्त होए। मेरे मन तज निंदा होमै अहंकार। हर जियो सदा त्याय तू गुरमुख एकंकार। रहाओ गुरमुखा के मुख उजलै गुरसबदी विचार। हलत पुलत सुख पाए दे जप जप हृदय मुरार। घर ही विच महल पाया गुरसबदी विचार। सतगुर तेजो मोह फेरै मथै तिनकालै। अंधन दुख कमावदै नित जो है जमजालै। सुपनै सुख ना देखनी बहु चिंता प्रजालै। सबना का दाता एक है आपे बख्श करे। कहना किशु ना जावई जिस पावै तिस दे। नानक गुरमुख पाईए आपे जाने सोए। श्री राग महला तीजा सचा साहिब सेवीए सच वडियाई दे। गुर प्रसादी मन वसै होमै दूर करे।

ते सुख अगलो ना लागै जम तीर भाई रे मैल नाही निर्मल जल नाय निर्मल सचा एक तू होर मैल भरी सब जाय रहाओ हर का मंदर सोहना किया करना हार रब सस दीप अनूप जोत तरपवन जोत अपार हट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन भय पंजना देख नरंजन भाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन रख हटाए ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे लय मलाए कस कस वट्टी लाई है परके इत चित लाए कोटे टौर न पाए नी करे खजाना पाए आस अंदेसा दूर कर उमल जाए समाए सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोई सुख है कहो दुख अगला मन मुख बूझना होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए बेद पुकारे वाची है बाणी ब्रह्म व्यास मुंजन सेवक साधका नाम रत्ते गुणतास सच रत्ते से जिन गए हो सद बलिहार है जास चौह जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए भगती पाए विहुणया मुख का लापत कोय जिनी नाम विसारे आप गुण मुठी रोए कोजत कोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप चाणे घर वसै होमै त्रिसन जाए नानक निर्मले उजले जोराते हर नाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बाबरे गुर की चरणी लाग हर जप नाम ते आए तू जम डुर पै दुख भाग हर जप नाम ते आए तू जम डर पै दुख भाग दू कणो दुहागणी क्यों थिर रह सुहाग भाई रे मैं अमर अवर नाई मैं ताओ मैं ता नाम निदान है गुर दिया बल जाओ रहाओ गुरमत पत साबास तिस तिसकै संग मिलाओ तिस बिन घड़ी न जीव बिन नाव मर जाओ मैं अंदले नाम न विसरै टेक टिकी कर जाओ गुरु जिन्ना का अंदला चेले ना ही टाओ बिन सतगुरु नौ न पाइए बिन नावै क्या सुआओ आई गया पुछता बना ज्यो सुनै करकाओ बिन नावै दुख देहरी ज्यो कलर की पीत तबलक महल न पाइए जबलक साच न चीत शब्द रपै घर पाइए निर्बाणी पद नीत हो गुर पुछो अपने गुर पुछकार कमाओ शब्द सलाई मन वसै होमै दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलान सत सदा हर रख है उतार सो क्यो मनो विसारिय सब जिया का आधार शब्द मरै सो मर रहे पर मरे न दूजी बार शब्द है ईते पाई हर नामे लगे प्यार बिन शब्द है जग भूला फिरे मर जन्मै वारो बार सब सलाह आपको बडो बडेरी होए गुरबिन आप न चीनी है कहे सुने क्या होए नानक शब्द पहचानिया हो मैं करे न कोय श्री राग महला पहला बिन पिर धन सिगारी है जोबन बाद कुआर ना माणे सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिगार दूकणो तो हागणी दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिलै रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सह सिगार सच माणे पेरे से जड़ी गुड़ा इत प्यार गुरमुख जान सियाणिया गुरमेली गुण चार सच मिलो वर कामणी पिर मोही रंग लाए मन तन साच ए बेगसिया कीमत कहण न जाए हर वर घर सुहागणी निर्मल सच नाए मन मैं मनुआ जे मरै ता पिर रावे नार इकत तागे रल मिलै गल मोतियन कहार संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार किन मैं उपजै किन कपै किन आवै किन जाए शब्द पछाण रब रह ना तिस काल संताए साहिब अतुल न तोली आए कथन न पाया जाए वपारी बन जा रहा है बजो लकाए कार कमावै सच की लाहा मिलै रजाए पूंजी साची गुरमिलै ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तुलाए सी सच तराजी तोल आसा मनसा मोहनी गुरु ठाकी सच बोल आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथन कहण न चुटिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिलै पाई रतन बीचार मन दीजै गुरे अपने पाई है सर्ब प्यार मुक्त पदार्थ पाई अवगण मेटण हर भाई रे गुरबिन ग्यान ना होए पुछो ब्रह्मे नारद है ब्याद बेद ब्यासा कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिया कत कहावै सोए सफल्यो बिरख हरी आवला चाव कणेरी होए लाल जवे हरमान की गुर भंडारै सोए गुर भंडारै पाई है निर्मल नाम प्यार सचो वखर संची है पूरे कर्मा पार सुखदाता दुख मेटणु सतगुर असुर संघार भवजल बिखमंडा रावणु ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तोलड़ा ना तिस बंज मलार सतगुर भय का बोहता नदरी पार उतार इक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए जेवा जलो जलावणी नाम ने जपै रसाए घट बिन सह दुख अगलो जम पकड़ै पछताए मेरी मेरी कर गए तन धन कलत न साथ बिन नावै धन बाद है भूलो मार्ग आत सचो साहिब सेविया गुरमुख अकथो कात आवै जाए पुआई है पै किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मिटिया लिखिया लेकर जाए बिन हर नाम न छुटिया गुरमत मिलै मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जीव

सुहान। सच्चे मार्ग चलदी अवस्थर करे जहान, अठ सर तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। जिसनू देवे दया कर सोई पुरख सजान, जिन मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान। माग सुचे से कांडिये जन पूरा गुर मेहरवान, फालगुण नंद उपार जना हर सज्जन प्रगट आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया बलाए, सेज सुहावी सर्व सुख उन दुखा नाही जाय। इस पुनी वड़ पागनी वर पाया हर राय, मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद लाए। हर जे हाय अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए, हालत पलत सवार ने चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन बौर न जन्मे धाय, जेवा एक अनेक गुण तेरे नानक चरणी पाए। फलगुण नित सलाही है जिसनु तिल नात माए, जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। हर गुर पूरा राध्या दर गै सच खरे, सर्व सुखा निध चरण हर पौजल बिखम तरे। प्रेम भगत तिन पाइया बिखिया नाहे जरे, कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे। पार ब्रह्म प्रम सेम दे मन अंदर एक तरे,

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैण आप त्याग सरणी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख नवसन भैन हर पिर बिन चैन न पाइए खोज दिठे सब गैन आप कमाने विछड़ी दोस्त।